दर्द चाड़ू बरदार इथे कीर्तन समाप्ति कर दें कीर्तन कर दें बाणी पढ़ दें आप जी आनंद सेवकंद को बेंत भुला हुई होंगे आप जी बख्शन योग हो भुला चुका दिखे मां आयो संगत वालों परम पूज सिंह साहब जी वालों बेंत माया शोध पेठ हाजर है पातशाह जी जिन्हें खजाने जमाए सुख जाने भरपूर करने सत खालसे जी काज राज करने हुक्म होया जी पंच मिनट का शब्द मंत्र करते कि कीर्तन कर जाइए सवैये महले चौथे के जीत बिचों एक है सच साज श्री निवास आदपुर सदा तू ही वाहे गुरु

किस प्रयास सुनाइए कहने कथन नीजे गोविंद हर भावे खाई अवर ओट में सगली देखी अमरी ओट में।

अच्छा बादशाह बड़ा आदमी कौन है? उसकी बहुत सी कारें हैं, उसकी बहुत फैक्ट्री है, उसके बहुत से बंगले हैं। नहीं, जो संगत के अंदर आकर अपने अहंकार को छोड़ता है वो ही सबसे बड़ा इंसान है।

दुर्लभ जन्म चिरंकाल पायो जात्यो कौटी बदला कातूरी को गाहक आयो लाद्यो काल बिरख जिबा आयो लाभ लापन के ताई आयो लाभ लापन के ताई मोहन ठगौरी सो उर्ज पहाड़ मोहन ठगौरी सो

कुछ एक इंस्ट्रूमेंट्स, कुछ एक साज जो हैं वो सानू इंट्रोड्यूस करन लगे हैं। उन्होंने पता है हर बंदा ना सितार सीख सकता है, हर बंदा ना तबला सीख सकता है, हर बंदा ना राग सीख सकता, बड़ी मुश्किल गल है राग सीखना, हर बंदा ना हारमोनियम सीख सकता, हर बंदे नु कीर्तन करना नहीं आ सकता। लेकिन मैं इस शब्द नु पढ़ के दंग होया, हैरान होया, आनंद आया कि गुरु महाराज ने कहा ए साज नहीं भी आंदे तो कोई गल नहीं, असल साज ही और हैं, वो आने चाहिए हैं। प्यार नाल सुनो शब्द, कहते हैं गुरु नानक देव जी महाराज दा ए महान रबी कलाम है, कहते हैं वाजा मत, जो अच्छी मत है ना वो यू असल वाजा है। इंटलैक्ट इज द रियल इंस्ट्रूमेंट, इंटलैक्ट विजडम, कहते हैं जो मत है ना सो जी अकल, यो असल वाजा है, ए वाजा होना चाहिए, बारला वाजा ना भी हो। अगली गल पखावज भाव, पखावज कहते हैं तबले, कहते हैं वाहगुरु का भाव ही असल तबला है, जिस दे कोल ए वाजा ते तबला आ गया कहते हैं होए आनंद सदा मन चाओ, उस इंसान की जिंदगी हमेशा आनंद रहेगा तो चा खिड़ा बनिया रहेगा। तो सात संगत ए वाजे ते बार बार ही रह जाते हैं, अंदर ते पहुंचते नहीं हैं, कई दफा इन्हों बजाण वाले टोटली नॉन म्यूजिकल रह जाते हैं कई दफा। लेकिन गुरु साहब कहते हैं मत का वाजा अते वाहगुरु के प्रेम का जो तबला है ये तुहाडे पास है, ते असल संगीत तुहाडे पास है। कहते हैं अगे एहा भगत एहो तपताओ, एहो असल भक्ति है, एहो असल तप है कि गुरु की मत का वाजा अते वाहगुरु के भाव का प्रेम का जो है वह तबला तुहाडे पास होवे, जिस दे पास ए साज है ना अंदर ले, क्योंकि मत भी अंदर है ते भाव भी अंदर है, जिस दे पास ए वाजा ते तबला है असल साज ते उस दे कोल है, असल संगीतकार म्यूजिशियन वो है। अगली गल कहते हैं इत रंग नाचो रख रख पाओ, जिंदगी दे रस्ते उत्ते इस रंग दे विच वाहिगुरु दी मत अते वाहिगुरु दे पाओ दे विच कहते हैं पैर रख रख के नचदे हुए जीवन दे उत्ते चले। अगली गल कहते हैं पूरे ताल जाने साला, पूरे ताल दा मतलब के ताल दी समझ, रिदम दी समझ, प्रकशन दी समझ, कहते हैं असल रिदमिक, असल तबला प्लेयर, असल ड्रमर ते ओ इंसान है जिहड़ा वाहिगुरु दी सिफत चला जानदा है। पूरे ताल असल ते तार ओ ताल ओ पूर सकदा है जिसनू वाहिगुरु की सिफत सला आंदी है, होर नचना खुशिया मनमा, बाकी बारला सारा नचना टपना जो संगीत है ये तो कहते हैं एक मन की गल है, मन दे तल ते है, इस तो अगे नहीं। अगे कहते हैं सत संतोख वजह दोए ताल, इथे ताल का अर्थ है छैणे। गुरु महाराज कहते हैं जिस इंसान दे पास सत है, सत का अर्थ है परोपकारी सुभा, सेवा करनी, केयरिंग एंड शेयरिंग। गुरु साहब कहते पास जिस दे पास केयरिंग एंड शेयरिंग एंड कंटेंटमेंट, सत संतोख कहते हैं उस दी जिंदगी दे विच दो छैणे वज रहे हैं। सत संतोख वजे दोए ताल, पैरी वाजा सदा निहाल, वाजा का अर्थ है पैरां दे विच जिहड़ियां झांझा घुंघरू। कहते हैं वाहिगुरु नूं निहारना उस दे दर्शन करने कुदरत दे विचों ही असल पैरां दे विच झांझना है, यानी ये अंदरले साज उन्होंने सानू दिते हैं। अगे कहते हैं राग नाद नहीं दूजा भाव, रब तो अलावा होर कोई प्यार ना रखना हिरदे दे विच ही असल राग है। जिस बंदे दे अंदर ते नफरत है, डुअलिटी है, लेकिन वह कहता मैनू राग बड़े आंदे हैं, बाबा जी कहते कोई राग रोग नहीं है, असल राग ते ए है कि वाहिगुरु तो अलावा होर को अंदर प्यार ना होवे, ए है असल राग। राग नाद नहीं दूजा पाओ, ए तरंग नाचो रख रख पाओ, इस रंग दे विच जिंदगी नू जो है रंगो, अते जिंदगी दे रस्ते दे उते जीवन दे मार्ग दे उते बाबा जी कहंदे हन नचदे हुए चलो, कुददे हुए चलो। अगली पंक्ति पाओ फेरी होवे मनचीर, जो डांस करते हैं वह फेरियां लेंदे हैं, सर्कलिंग करते हैं। गुरु साहब कहंदे हन मेक यूर माइंड सर्कल अराउंड वाहिगुरु, अपने मन नू वाहिगुरु दे आले दुआले पहुंचतियां दो। कहिंदे ने भाव फेरी, वाहिगुरु दा भाव ही असल फेरी होवे, नाच दी डांस दी होवे मनचीत, बहिंदियां उठदियां नीता नीत। फिर कहिंदे हन तुसीं देखिया होवेगा कथक डांस दे विच कई दफा कि जो नृत्यकारी करते हैं, जो डांसर होंदे हन, वह कदे घुमाटणियां लैंदे हन, कई किस्म दीआं मूवमेंट्स करते हैं, कई दफा वह अचानक जमीन उत्ते लेट जांदे हन। बाबा जी कहिंदे हन लेटन लेट जाने तन सुआ, ए समझ नू समझना कि एक दिन इस तन ने हमेशा लई सुआह होके लेट जाना है, असल लेटना है बारले इस लेटन नू छड्डो, यानी जिसने ए लेटना नहीं सिखिया बारला लेटना जो डांस दा वो व्यर्थ है, बेकार है। लेटन लेट जाने तन सुआह, इत रंग नाचो रख रख पाओ। अखीरलियां पंक्तियां बाबा जी कहने सिख सभा दिखिया का भाव, आ बहुत समझण वाली गल। कहते हैं सिखां दी सभा स

राग गौड़ी चेती विच ऋषभ धैवत कोमल दोवे मध्यम अते बाकी सुर शुद्ध लगते हैं। इस दे आरोह विच गंधार सुर वर्जित है। इस दी जाति शाड़व संपूर्ण वादी पंचम संवादी षड़ज अते समा शाम दा है। इस राग विच मन राम नाम गुण गाइए शब्द दा गायन कर रहे हन प्रोफेसर करतार सिंह।

राजस्थान ओके मुझे तीस प्रकार थका सिर से पागी कोई नहीं कुर्ता भी कोई नहीं था नगन

भगवान ने अपने तखत को चार बना तो इच्छा आ गए एक कहने लगे हो भगवान मेरा मित्र मेरा प्यारा सुदामा भगवान कृष्ण जी बजे हैं पहुंचे जिसे सुदामा खड़ है जाके की तर दूरों देख अयोध्या जी ने दूरों देख दंडौत कर रणौता कर रणौत जान दे एक तो होते ना अपना मत्था टेक ले एक है दंडौत दंडौत हो गया सारा श्री लम्मा पर पर्वत पर भी दंडौत बंधन अनुभव ताकतवाले कितने कितने मुझे प्रेम यानी सार सिंह जो गुरु हो गया थे दंडौत कर सारा श्री पूजा करके दो मिनट जोड़ के एक गुरु के नमस्कार भगवान कृष्ण जी सुदामे भी अगे जाके पहला दंडौत की दोनों देख दंडौत करे फायदा भी लिखा

0: पहला गेट पर रखा, चार परिक्रमा करके सुनामे उसे छाती कर सारा गेम मित्र भाई कर दे मित्र कि स्वाद पूरा है तो मित्र हम तेरी स्वाद पूरा नहीं तो वो मित्र मुखात्मक भी कर लेंगे निंदा भी कर लगे जित दिन स्वाद ना उपजे तित दिन बोलन गम सुनामे की प्रकरणा करके छाती ना लेके आए ते जिस आसन से आप बैठे सब सुनामे ने बिठा शुक्रमी से राज जाओ मेरा मित्र आया है जल में आओ सुनामे ने जल को शुक्रमी से राज का पानी कैसे इधर भगवान कृष्ण सुनामे ना मिठे मिठे बदल कर कितना चिर किसे कुमार सर जिस तेरी हालत की हो गई है तेरी दिशा की बन गई है ऐसे बिहार बिहार मुस्लियों एक कंटक जाल पड़े पद को तेरे पैर झंडे चुके जिसकी कोई भी थी पर सुधाम जी को
1: You are listening to SikhNet Radio, broadcasting live Gurbani Kirtan 24 hours a day from around the world.

मन तन तेरा तन भी तेरा तू ठाकुर स्वामी प्रभ मेरा जियो पिंड सब रास तुम्हारी तेरा।

कबीर मानस जंदुर्लभ है, होतना बारंबार जो बंथल पाके पोई गिरे बोरना लागे डार।

तब एक मानस दे ही पाए, मानस जन्म अमूल पायो, वृथा काए गवाओ, गुर सेवा ते भगत कमाई, तब एक मानस दे ही पाए। इस दे को सिमरे देव सदे पज हर किसे, पजो गोविंद भूल मत जाओ।

जब लग बिकल पाई नहीं बाणी पज लै रे मन सारे पानी अब ना पजस पजस कब पाई आवे अंत ना पजया जाए ए तेरे अवसर ए तेरी बार ए तेरे अवसर ए

या भीतर जो राम बस्त है साचो ताए पछानो पई प्राप्त मान देहरिया गोविंद मिलन की ए तरी बरिया।

गोविंद भजन बिंद थे सब काम जो किरपन के नरार्थ दाम। गोविंद भजन बिंद थे सब काम जो किरपन के नरार्थ दाम। फिरत बोते जुगहारे हो फिरत फिरत।

मानस जन्म दुर्लभ गुरमुख पाया मन तन होए चुलंब जे सतगुर पाया चले जन सवार वखर सच लै पत पाए दरबार सतगुरु शब्द पै पत पाए दरबार सतगुरु शब्द पै चले जन सवार चलिया पक्ष जन सवार वाजा वाए सी चलिया

कई जन्म पैकेट पतंगा, कई जन्म गाजर मीन कुरंगा, कई जन्म पंखे सर्प होयो, कई जन्म पंखे सर्प होयो।